0: Want your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.

0: EFM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City. अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.

0: Boost your song. Only on City FM 89.
1: Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
2: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
3: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड द ऐप। अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
6: अ प्लेट दैट इज फुल मे नॉट बी इनफ। मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान्स चिल्ड्रन हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज अफेक्टिंग देयर कॉग्निशन, ग्रोथ एंड फ्यूचर।
7: एक्ट पाकिस्तान एडवोकेटिंग चेंज टुगेदर। A Dawn Media Initiative.
8: We're playing your song.
9: The first time at the disco. When you love holiday with friends, retro cinema.
10: Hey, where did we go? Days when the rains came.
9: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
11: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
12: City FM 89.
8: We're playing your song.
7: You're listening to
13: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
14: Welcome back to Full Disclosure, another new one on today's playlist. So maybe I was exaggerating when I said there was no new songs, but this is Charlie Gier and Simone Ashley, as in Kate, as in the Viscountess of Bridgerton. Stunning. If you get me started on Bridgerton, man, and especially the season, so I'm talking about season 2, Kate and Anthony's story, Kate Sharma, played by Simone Ashley, the way they did our brown girls, our Tamil beauties, so dirty in their makeup and stylist choices, it makes no sense. She's probably one of the most stunning celebrities out there, and it was absolute garbage. Anyways, I could talk about that forever. This is a radio show. I cannot show you visuals. Take my word for it. Anyways, here's Charlie Gier and Simone Ashley with So Good.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
5: Trending today.
6: Christopher Nolan has confirmed his next film won't arrive for at least 3 years following the release of The Odyssey. The director cited physical and mental exhaustion, noting he hit the absolute limits of his stamina during production. Billed as the first movie ever shot entirely on IMAX 70mm film, the epic required intense practical effects and remote location shooting.
7: CDFM 89, we're playing the song. कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
8: नाज़रीन ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
9: बंद करो ना ढक्कन
10: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure Shore se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: Abhi Bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
5: IELTS seems difficult. Four sections. Limited time. High pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers. Mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
0: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
9: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक
10: दैट वाज दुआ लिपा ट्रेनिंग सीजन अप नेक्स्ट हियर्स टीएलसी विद नो स्क्रब्स

0: Grange.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
6: City FM 89.
7: Trending today.
8: Christopher Nolan has confirmed his next film won't arrive for at least 3 years following the release of The Odyssey. The director cited physical and mental exhaustion, noting he hit the absolute limits of his stamina during production. Billed as the first movie ever shot entirely on IMAX 70mm film, the epic required intense practical effects and remote location shooting.
9: City FM 89.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
11: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, no worries.
12: अभी बैंक बनाता है आपका आज. अभी. Download the app. अभी. अभी बैंक. Financial freedom for all.
11: Hire कर नया No Frost IoT Refrigerator, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. Twin inverter technology, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. No Frost, no worries.
13: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
7: IELTS seems difficult? 4 sections. Limited time, high pressure.
8: Listening, reading, writing, speaking.
7: Not with AEO Pakistan.
8: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
7: Learn strategies that actually work.
8: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
7: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
9: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो. अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी. नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
10: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: We're playing your song.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
4: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर.
5: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी. फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी. कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी. डाउनलोड द ऐप अभी. अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल.
6: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taki ye grow kare 50% faster.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहाँ टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. Daily availability, nationwide centers, और results भी मिले within just 3 days. आज ही book करें अपना IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.

0: का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो अभी पैसे भिजवाओ मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड द ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
1: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to
3: Nonstop Hits.

0: TFM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Christopher Nolan has confirmed his next film won't arrive for at least 3 years following the release of The Odyssey. The director cited physical and mental exhaustion, noting he hit the absolute limits of his stamina during production. Billed as the first movie ever shot entirely on IMAX 70mm film, the epic required intense practical effects and remote location shooting.
5: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
3: अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड दी ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
2: सिटी एफएम 89
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
3: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों अब खुलवाओ अभी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी डाउनलोड दी ऐप अभी अभी बैंक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल
2: वी आर
1: सिटी एफएम 89
7: यू आर लिसनिंग टू
8: नॉन स्टॉप हिट्स
9: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you, and the music.
10: Back to back starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: City FM 89.
3: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी नया अकाउंट भी कल परसों क्यों, अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज अभी। डाउनलोड दी ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: City FM 89,
5: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन।
1: यू आर लिसनिंग टू
6: नॉन स्टॉप हिट्स।

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: सिटी एफएम 89।
4: नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
4: सैलरी का वेट हो और सैलरी फिर लेट हो, पर एडवांस सैलरी से तुम सेट हो। अभी पैसे भिजवाओ, मंगवाओ या सेविंग्स बनाओ, अभी। नया अकाउंट भी कल परसों क्यों? अब खुलवाओ अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल होगा तभी जब हर फैसला होगा अभी। कुछ बैंक्स आपका कल बनाते हैं, अभी बैंक बनाता है आपका आज। अभी डाउनलोड द ऐप अभी। अभी बैंक, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल।
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
7: We're playing your song.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: Christopher Nolan has confirmed his next film won't arrive for at least 3 years following the release of The Odyssey. The director cited physical and mental exhaustion, noting he hit the absolute limits of his stamina during production. Billed as the first movie ever shot entirely on IMAX 70mm film, the epic required intense practical effects and remote location shooting.
6: City FM 89.
7: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
8: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
9: Eighty-nine.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-stop hits.
10: No talk. Just you and the music.
2: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: City FM 89.
0: We're playing your song.
3: You haven't blown the candles to your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
4: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
2: City FM 89.
0: On the dial.
4: You're listening to
5: Nonstop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: Have you saved our WhatsApp number yet?
5: 03142-898989.
0: Get in touch over WhatsApp.
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
3: City FM
1: 89.
7: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: सिटी एफएम 89.9
4: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
1: City FM 89,
5: your drive along companion।
6: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
1: You're listening to
7: non-stop hits.
8: Rock that, don't stop. Rock that, don't stop.
9: Take a deep breath of that alkaline air.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
0: Coming up next.
1: Beat Camp. City
5: FM
1: 89.
6: Trending today.
7: Christopher Nolan has confirmed his next film won't arrive for at least 3 years following the release of The Odyssey. The director cited physical and mental exhaustion, noting he hit the absolute limits of his stamina during production. Billed as the first movie ever shot entirely on IMAX 70mm film, the epic required intense practical effects and remote location shooting.
5: City FM 89, we're playing the song.
8: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
9: our TikTok will have a scrolling for days.
0: Follow us at CityFM89 on TikTok.
10: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश
11: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
12: आई ग्रो अप आई वांट टू बी स्ट्रांग
13: फॉर मेनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान दैट चांस इज ऑलरेडी स्लिपिंग अवे 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
12: I want to learn big things.
13: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
12: I want to be the fastest.
13: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
12: I want to grow up like everyone else.
13: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
14: Nurture today, strengthen tomorrow.
13: Act, a Dawn Media Initiative.
0: City FM 88.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
1: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग व्हील फिक्स.
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.
4: सिटी एफएम 89
1: ऑन द डायल.
5: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
6: The official hashtag on Twitter and Facebook, #CityFM89. That's #CityFM89.
7: The first time at the disco. When you love Holiday with friends. Retro cinema.
8: Hey, where did we go? Days when the rains came.
7: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
9: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. Only on City FM 89.
10: City FM 89.
1: You're listening to
11: Beach Camp.